0: نوديها كم ميجا هرتز تبقى هي فعلا.
1: ए मावे सुट्टा लाफिंग
2: आहार में सुट्टा लाफिंग
3: ए लिस्टो को मावे सीमा ना ला
4: अमिल्ल फैसा आंदा गें अमिल्ल हाशिंगड़ा गेल्लुं दिरुमा की किहा मोय कमे ए में मावे सुट्टा लाफिंग
5: दुम फाई आहार में गे हाथुरे दुम फतु गे इस्तेमाल कुरुम गे साबुं दिमावा सिही मसल तो गा आहार को हैं मिलियन वुरे किना मीहु मरुआ कमा ताफा सिसाब तकुं दक्का फस नुजे ही अवह दुम्फतु के इस्तियो माल कुरूं हुट्टा लमाहिंगा।
6: दिवे ही एफएम, नुवधिये एके मेगाहर्ट्स।
7: मी अहमद

0: दोहा को सारे गीतों का जैसा सारो वादा नंता
1: नो
0: प्रॉमिस
1: प्रॉमिस
2: एमी हम था अबादो एकु गवो मा बाउ तो वे

0: मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है।
1: रोक लो तो बात कर लो।
2: अल्फा अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है। मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है। फतेह को रोकोगे कैसे सीता? अपने जंगल का शेर है वो।
3: और मैं तफसील में हफ्ता का मैं बलाली दे ट्रेलर की गिलन दिवे ही उफेद में कमवा दें एम में अवह ओलिंपस सिनेमा नुकुतमा हम जेफवा फिल्म गिलन के ट्रेलर आदि अल्फा बी फिल्म के ट्रेलर के मच्चन गिलन ओलिंपा अंगनानी जून माह के तीरी होगा आदि अल्फा मुली दुनिया की सिनेमा तक रिलीज कुरानी चुले माह के तीन एक में हफ्ता का रिलीज भी इतरो बाइंग एहन ट्रेलर तक का टीजर तक बलायर में हुकुर तो रिलीज वा पिक्सा के टॉय स्टोरी फहें स्टार ट्रेक स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड सीजन हाथरी के फुरी हम ट्रेलर ट्रेक फहें के फुरतम टीजर आदि डिज्नी के हेक्स के फुरतम फिल्म विसीमेने एनिमेशन आदि साइंस फिक्शन शौक वेरवा बेफुना में बलाला रंगल उफेदुन तके एहमति बेफुन आदि बला नुलाकम वाणमा में ट्रेलर तक बलाला यूट्यूब वर फसे हम फिन्नानी इतर बैठक दियोंगे कुरिंग अनिका भी समा रीति लावे मिकेनेस्ते नहीं।

0: නුවදියේකේ මෙගාහර්ට්ස් දිවයි FM අබදුස් එම්මේ ගාතුග.
1: ओलंपस सिनेमा मिमोगे तिरियुग रिलीज वा हमजेफवा दिवेई फिल्म किलन के वाहकें ट्रेलर्स मिबैगस अरमें बाला लैफिंग कोम्मे मोलु उफेद्दुमे कोम्मे मोलु फिल्मेगे फाहतुगवेस वरा फुरिहमा वाहकें ओवे एहनो गिलन मि फिल्मगे फाहतुगवेस हुरी मकबूल आदि हुनरवेरी लियुंतेरियें मि फिल्मगे फुरिहमा वाहक बिनाविकें एगोताबेगोतुं अरमें मोहम्मद कासिममा वाहक दक्कालाना

0: OST.
1: Demyoti hurihai hunterenge emme favorite segment ade OST. OST mi pam mi genesteni filmakun nuata drama ikun mashur OST laveng. Mi far mi hoali mi ke madu ahar takegi kurin release vi muli duniye control kolli lave ke denne vitane. Kaveni ge hafta taka Instagram reels taka radio takun hama emme sikun takavis milava adu kendi kendu de. आधे मी हफ्ते में हुआ लिलावे की ब्रह्मास्त्रा पार्ट वन के केसरिया मिलावा लवकी आफनी अरिजीत सिंह अरिजीत सिंह के मिलावे मी हफ्ता के एमए फर्स्ट शो निम्मालाफ अरुण बाकेलानं अरुण उम्मीद करनी मी हफ्ता के मी शो एक ही विस्ती बेफना शागुर बैठ के गेनिस देवनु शो एक वी कमं इराद कुरिविया
0: OST.